ये है लाइका रेडियो, लाइका रेडियो नेटवर्क, ब्रॉडकास्टिंग इन ग्रेटर लंदन, ग्रेटर मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स विद द यूकेस बिगेस्ट एशियन हिट्स. Raj Badan drives Leicester home with

वेद पाठ असंख जोग मन रहें उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाए तार, कुदरत कौन कहा।

विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथे पाए नान गया जापै जाए

0: सबसे निराला मास्टर पानी पूरी और पानी पूरी का पानी.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: Bring your vision to reality with ImagineX Global. Our team of Imagineers create immersive experiences from digital content to epic live events. Whether it's a high-energy concert, an innovative conference, sleek brand visuals, or stunning photography and videography, for your special moments, we have you covered. We're a tech-driven, human-led creative experience company delivering cutting-edge digital solutions and expert event management. Let's turn your ideas into epic memories. Contact us today at ImagineXGlobal.com or WhatsApp 0758-580-180. And let your ideas take center stage. ImagineX Global, where creativity, technology, and humanity unite the world.
3: From Solihull to Erdington, Leica Radio is now broadcasting throughout Birmingham on full-scale DAB. This is Leica Radio Midlands.
4: आज नवरात्रि का पहला दिन है. इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है. मान्यता है कि माँ को गाय के घी का भोग अर्पित करने से आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है और जीवन के संकट दूर होते हैं. प्रार्थना की अब घड़ी आ गई. माँ शैलपुत्री आपके द्वार आ गई. होगी अब मन की हर मुराद पूरी. भरने सबकी झोली माता रानी आ गई. लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं. जय माता दी.
5: नवरात्रि स्पेशल ऑन लाइका ब्रॉट टू यू बाय स्टार टूर्स. स्कॉटलैंड जाना है तो स्टार टूर्स के साथ ही जाना है. स्टार टूर्स, ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन.
3: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
6: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
1: Hello friends, मैं हूँ सरिता सबरवाल. Every weekend 14/7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ. Saturday and Sunday मेरे साथ ही रहेंगे.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide. Celebrate Diwali with Chalo Let's Go and Chai Chopal. Diwali Gala 2026.
1: Saturday 31st October at the Conference Suite West Bromwich. Enjoy a vegetarian feast, live entertainment and family fun.
0: Adults £30. Children aged 5 to 12 just £15. And under 5s go free.
1: Book now at DiwaliGala2026.eventbrite.co.uk. For sponsorship, call Rakesh on 07436 594 323.
0: Sponsored by
1: Garg Solicitors, award-winning nationwide jewellers Diamond Heaven, ICNW Limited and SBI UK.
0: Radio partner, Leica Radio.
2: For 15 years, Jennan has been part of your story. Across generations, across cultures, across every style. For everyday moments, special occasions, celebrations and new beginnings. Because style has no age, no background and no boundaries. 15 years of Jennan. For you, for us and for everyone. The Jennan and J-Dot anniversary sale up to 70% off is now on. Visit our stores nationwide, including Birmingham and Leicester. Or shop the sale online at jennan.com and junaidjamshed.co.uk.
3: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू
4: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 02023736333 नाउ एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स योर travel mantra.

0: जाने कैसे कब कहां इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। किशोर कुमार और लता जी की आवाजों में शक्ति फिल्म से था ये गाना, जो 1982 में आई थी और जिसमें आर डी बर्मन का म्यूजिक था। और उससे पहले आपने खुददार फिल्म का गीत सुना, अमिताभ बच्चन परवीन बॉबी की एक और धमाकेदार फिल्म जिसमें राजेश रोशन का म्यूजिक था। और आप समझ ही गए होंगे कि आज गीतों में अमिताभ बच्चन के गीतों का बोलबाला रहेगा। हाँ जी, सही सुना। उसका कारण है क्योंकि आज बिग बी ए बी या फिर कहूँ अमिताभ बच्चन अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज 84 ईयर्स के हो गए हैं। 11 अक्टूबर 1942 में जन्मे थे और देखिए तब से लेकर अब तक, यानी कि जब से फिल्म इंडस्ट्री में आए हैं, अलग अलग रूपों में अलग अलग कामों की वजह से चर्चाओं में है, पॉपुलर है, लोगों के दिलों में है, लोगों की पसंद है और आज भी लोग उनके बर्थडे को बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। इनफैक्ट हर चैनल, हर रेडियो स्टेशन पर आज अमिताभ बच्चन का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो हम क्यों पीछे रहें, हमारे भी बहुत सारे लिसनर्स हैं जो उनके बड़े फैन हैं, इंक्लूडिंग मी। तो आज उनके गीतों का शो में बोलबाला रहेगा। लेकिन आज से नवरात्रि की भी शुरुआत हुई है, तो सबसे पहले सभी सुनने वालों को जय माता दी, जय माँ अम्बे, जय दुर्गे माँ। और बस यही कहूँगी कि ये नवरात्रि मजे के साथ धूमधाम से बनाइए और माता रानी का आशीर्वाद आप सबके ऊपर रहे, जीवन में सुख शांति समृद्धि रहे, कभी कोई दुख ना आए, हमेशा हंसते मुस्कुराते और खुश रहे। ऐसी ही कामना के साथ बढ़ते हैं आगे और आपको बता देते हैं कि यह लाइका रेडियो नेटवर्क जहां पर मैं ऋतु शर्मा हूं आपके साथ पूरे 3 घंटे, हम और आप ढेर सारी बातें करेंगे, गाने तो ऑफकोर्स सुनेंगे ही, सुनवाऊंगी जोड़ी नंबर 1, बजाऊंगी कुछ ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक्स भी और हाँ, हम अपना 3 वर्ड्स गेम भी खेलेंगे। बस आप रेडियो सेट्स के पास बैठे रहिए और मेरा साथ देते रहिए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो 1 pound आज आपको देगा 127.5 भारतीय रुपए। लेकिन याद रखिए, ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा via SBI branch online और by using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions भी apply रहेंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: We hit
3: Leica Radio.
2: It's back, it's bigger and better.
4: ZTV and Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival.
2: Powered by Ram Jewelers and associated with UK Management College.
4: Join us on Sunday the 1st of November from 12 p.m. up until 8 p.m. at the Ram Gariya Centre in Leicester. With shopping, food, entertainment and plenty more. It's a Diwali celebration you won't want to miss.
2: See you there. Supported by Disha Premium, travel partner, home and away holidays, exclusive charity partner, Gurdharmic.
4: For store bookings, call 07803-240-580.
2: Or visit diwalishoppingfestival.co.uk.
5: For 15 years, Jannan has been part of your story. Across generations, across cultures, across every style. For everyday moments, special occasions, celebrations and new beginnings. Because style has no age, no background and no boundaries. 15 years of Jannan. For you, for us and for everyone. The Jannan and J. Anniversary Sale up to 70% off is now on. Visit our stores nationwide, including London. Or shop the sale online at jannan.com and junaidjamshed.co.uk.
6: कभी कभी
4: Catch the evergreen classic कभी कभी on its 50th anniversary.
7: मेरे ख्याल में तुम्हें शादी तो लेनी चाहिए.
4: This Sunday from 2 p.m. at your nearest Showcase cinema.
7: हमने तय किया था कि हम कभी एक दूसरे के रास्ते से नहीं गुजरेंगे.
4: Exclusive radio partner Leica Radio Network. Log on to showcasecinemas.co.uk/saff/UK.

0: नवरात्रि का पहला दिन है। इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मान्यता है कि माँ को गाय के घी का भोग अर्पित करने से आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है और जीवन के संकट दूर होते हैं। प्रार्थना की अब घड़ी आ गई, माँ शैलपुत्री आपके द्वार आ गई। होगी अब मन की हर मुराद पूरी, भरने सबकी झोली माता रानी आ गई। लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।
1: नवरात्रि स्पेशल ऑन लाइका ब्रॉट टू यू बाय स्टार टूर्स। स्कॉटलैंड जाना है तो स्टार टूर्स के साथ ही जाना है। स्टार टूर्स, ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन।
2: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
3: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: जी हाँ बिल्कुल, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी बोल, और यही काम करना है पूरे 9 दिन, क्योंकि ये नवरात्र है और 9 दिन तक ये त्यौहार चलने वाला है। तो आज के नवरात्रि के पहले दिन की आप सभी को ढेरों ढेरों बधाइयां। और जैसा कि आपने सुना कि नवरात्रि के पहले दिन नव दुर्गा के प्रथम स्वरूप यानी कि माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैल का अर्थ होता है पर्वत या हिमालय, और पुत्री का अर्थ होता है बेटी, यानी कि पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण ही इनका नाम माँ शैलपुत्री पड़ा। लेकिन आप सब में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि हम ये नौ दुर्गे का त्यौहार क्यों मनाते हैं, जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं उनको जरूर जानना चाहिए कि ये नवरात्रे क्यों मनाए जाते हैं।
1: Brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो मैं आपको जरूर बताऊंगी कि ये नवरात्रे क्यों मनाए जाते हैं, खास तौर पर इस समय शरद नवरात्रे जिन्हें कहा जाता है। जरूर अपने बच्चों को या उन्हें बताइए जिन्हें नहीं पता है। इसके पीछे दो बातें हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महिषासुर नाम के शक्तिशाली असुर ने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या के बाद वरदान पा लिया था, और वो वरदान था कि कोई भी देव, दानव, पुरुष उसका वध न कर सके। और जब ये वरदान मिल गया तो महिषासुर अहंकार से भर गया और उसने तीनों लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। और इस महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी कि भगवान शिव के पास पहुंचे, और सभी देवों के तेज और शक्ति को मिलाकर देवी दुर्गा माँ शक्ति का प्राकट्य हुआ, और देवताओं ने माँ दुर्गा को अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र भी प्रदान किए। और इन सब के बाद माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक भीषण युद्ध चला, और 10वें दिन यानी कि जिस दिन हम विजयदशमी मनाते हैं, माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर तीनों लोकों में उसके अत्याचारों से लोगों को मुक्ति दिलाई, और इसी कारण माँ दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी कहा गया, और इन 9 दिनों को नवदुर्गा की पूजा के रूप में मनाया जाने लगा। और एक और है बात जो आपने सुनी होगी कि जब लंकापति रावण से युद्ध के दौरान भगवान श्री राम ने रावण का वध करने में और युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए इसी अश्विन महीने में माँ दुर्गा की 9 दिनों तक कठिन उपासना की थी, और श्री राम की भक्ति और पूजा से प्रसन्न होकर माँ शक्ति ने उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया था, और इसके बाद 10वें दिन यानी कि इस महीने जो अश्विन महीना है कि दशमी को भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, और इसीलिए नवरात्रि के समापन के अगले दिन विजय दशमी यानी दशहरा का त्यौहार मनाया जाता है। तो वही आप सबको आज के दिन की इस नव दुर्गे के पावन पर्व की ढेरों बधाइयां, और जो गीत मैंने बजाया आप सबने पसंद किया, तो बस साथ देते रहिए, कुछ ऐसे ही गीत सुनवाती रहूंगी। लेकिन याद है ना, आज अमिताभ बच्चन का बर्थडे है, तो उनके गीतों का आज बोलबाला रहेगा प्रोग्राम में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे।
1: Like a radio. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: मोहम्मद रफी साहब और लता जी के आवाज में ये गाना उन सभी को डेडिकेट करते हैं जो रफी साहब के फैन हैं, खास तौर पर हमारे विजय जी। आपके मैसेजेस मिले हैं और आपने कहा है कि ऋतु ऐसा लग रहा है कि आपकी आवाज अब थोड़ी बेटर हो गई और आपने जितने भी लिसनर्स की एडवाइस है वो फॉलो की है।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
0: बिल्कुल सही कहा विजय जी आपने, मैंने आप सबकी एडवाइस पूरी की है। इनफैक्ट आपको सच्ची सच्ची बता दूं कि मैं बहुत जतन कर रही हूं कि मेरा गला और मेरी आवाज़ जल्दी से ठीक हो जाए, और इसीलिए आज जो मेरी छोटी सी बॉटल है थर्मस वाली, उसमें मैं मैजिक वाटर बनाकर लाई हूँ। यू नो वो मैजिक वाटर जिसमें थोड़ा सा जिंजर, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा लौंग, तुलसी के पत्ते, हल्का सा लेमन और हनी डाल के आज मैं सारा लेकर आई हूँ और दो दो से साथ साथ पीती जा रही हूँ, क्योंकि दिन में मुझे कितना भी कॉफ हो जाए, कोल्ड हो जाए, आई डोंट माइंड, लेकिन रात में जैसे ही आप सोते हो ये सारी चीज़ें एक साथ प्रकट हो जाती हैं और वो भी डबल स्वरूप में, और फिर आपको सोने नहीं देती। भाई मुझे लगता है यार जितना तंग करना है दिन में कर लो, रात में तो बंदे को चैन से सोने दो, लेकिन रात में ये सब चीज़ें राक्षस बनकर सामने खड़ी हो जाती हैं और आप सो नहीं पाते, और इसीलिए दिन में मैं पूरा जतन करूँगी कि इनसे फाइट करूँ ताकि रात में ये मेरे पास तो क्या मेरे रूम के पास भी ना आ पाए। एनीवेज थैंक यू, आपने मेरा हालचाल जाना पूछा और आपके ढेरों ढेरों मैसेजेस मुझे मिले हैं। सभी को जय माता दी, सभी का स्वागत है इस शो में, और आप में से कुछ साथी कहते हैं कि हमें आपका उत्तराखंड का एक्सपीरियंस जानकर बहुत अच्छा लगा। तो अभी तो पता है मेरे पास बहुत सारी बातें हैं आप सबको बताने के लिए, अब बताती रहूँगी धीरे धीरे, अब तो आ गई हूँ, अभी हाल फिलहाल कहीं जाने वाली नहीं हूँ। और शबीर कुमार जी आपने भी चार लाइन हमारे साथ शेयर किया, कहते हैं मुझको फिर वही सुहाना नजराना मिल गया, नजरों को जो दीदार तुम्हारा मिल गया, और किसी चीज की तमन्ना क्यों करूं जब मुझे तेरी बाहों का सहारा मिल गया। वाह क्या बात है।
1: ये है लाइका रेडियो, द रितु शर्मा शो फीचरिंग क्लासिक्स नॉनस्टॉप विद रितु शर्मा ऑन लाइका रेडियो, ब्रॉट टू यू बाय साउथहॉल ट्रैवल।
0: तो चलिए आपको बता दें कि अगर हॉलीडे जाने का प्लान कर रहे हैं तो साउथहॉल ट्रैवल के पास अफोर्डेबल दुबई के ऑफर है, जिसमें एक्सक्लूसिव डील्स हैं एट सेलेक्टेड पार्टनर होटल्स विद डायरेक्ट फ्लाइट्स विद एमिरेट्स फ्रॉम जस्ट 629 पर पर्सन फॉर 3 नाइट्स, ट्रैवल बाय 10th December। जल्दी से कॉल कीजिए साउथहॉल ट्रैवल को ऑन 0208-843-4444 पर, या फिर विजिट कीजिए southalltravel.co.uk।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
2: This Diwali, let your celebrations shine brighter.
3: Looking for amazing Diwali offers? Then there's only one place to shop.
2: Falcon Cash and Carry. From your favorite groceries and fresh produce to Diwali sweets, snacks, drinks and festive essentials.
3: We've got everything you need to make your Diwali truly special.
2: And wait, the Diwali mega offers are here.
3: Bigger savings, amazing prices and fantastic value, all under one roof. So don't miss out. Bring your family, fill your trolley and get ready to celebrate Diwali in style.
2: Falcon Cash and Carry, your one-stop shop for Diwali. Visit Falcon Cash and Carry today, 82A Syston Street, Leicester, LE12JU, and 2A Rowlatt's Hill, Leicester, LE54UN.
4: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than Citybond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises, and soul-enriching yatras. We've got it all. Call Citybourne Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
5: London, are you ready? Raghavend presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December.
6: Dil ne ye kaha hai dil se bole chudiya.
5: One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ova Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
7: Dubai is an opportunity to now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone.
8: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
9: Dubai is the place. 11,
8: 11. Call the Danube Properties London office today on 0203 963 5757 and book your meeting.
10: Danube 11, 11. Danube Properties. Danube 11, 11.
11: New at Pepe's.
12: Pepe's Melts.
11: Flame grilled flavour, toasted to order. Choose chicken melt with flame grilled chicken, melted cheese and flavour packed toppings in toasted focaccia.
12: Or go for paneer melt with the same Pepe-licious flavour. Choose smoky barbecue cheese or fresh tomato salsa cheese.
11: Chicken or paneer, barbecue or salsa. Your melt, your way.
12: New melts, only at Pepe's.
8: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203 773 633 or visit mantraholidays.co.uk.
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
13: Punjab, the biggest tune.

0: चीज।
1: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है।
2: हेलो हेलो हेलो, वेक अप विद मी काजल ऑन द ब्रेकफास्ट शो व्हेयर आई टेक यू डाउन मेमोरी लेन, गेट इंस्पायर्ड बाय मॉर्निंग मंत्रा मंडे टू फ्राइडे 6 AM टू 10 AM लाइका गोल्ड एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स।

0: now visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए फॉरन का फोन मिलाएं 0208-839-0880 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन
2: Something new has just landed at Cake Box. Nationwide delivery is here. Now you can send a personalized cake box straight to someone special, wherever they are. Birthday miles away? Send a cake. Big congratulations? Send a cake. Just want to make their day? Send a cake. And because it's new, delivery is free for a limited time only. Wherever they are, be part of their celebration. Cake Box Celebrations, now delivered nationwide. Order now at

0: तो ये थी आशा भोसले और किशोरदा की आवाजें और इस बार हम अमिताभ बच्चन की बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं और आप सबके मैसेजेस मिल रहे हैं कि आपको गीतों में मजा आ रहा है तो बस हमारा साथ देते रहिए ऐसे ही और भी बहुत सारे गाने मैंने लाइन अप किए हुए हैं और अब थोड़ी ही देर में शुरू करने वाली हूँ आज के जोड़ी नंबर वन का सिलसिला जिसमें एक बार फिर से अमिताभ बच्चन और किशोरदा की आवाज़ें क्योंकि किशोर कुमार के लिए उन्होंने ही बहुत ही खूबसूरत गाने गाए हैं 80s में हो 90s में हो 70s में हो जो अमिताभ बच्चन की सुपर डुपर हिट फिल्म्स हैं लेकिन उससे पहले आपके ढेरों मैसेजेस मिले हैं ज़रा उन पर एक नज़र डाल लें नवरात्रे आज से शुरू हुए हैं तो नवरात्रों की आपको ढेरों बधाइयाँ जय माता की जय माँ अम्बे एंड साथ ही साथ ये मैसेज मुझे भेजा है कि इन्होंने केदार जी थैंक यू या कहूँ ऋषि पटेल दोनों नाम लिखे हैं और आप चाहते हैं कि अमिताभ जी और रेखा जी का मुकद्दर का सिकंदर का गाना या फिर जया प्रदा का शराबी गाना बजा दिया जाए हाँ ठीक है अभी तो बहुत टाइम है देखती हूँ जगह हुई तो ज़रूर बजाऊंगी गुरुदेव गांजा आप हमारे साथ हैं प्रोग्राम सुन रहे हैं थैंक यू साथ देने के लिए थैंक यू वीरेंद्र चौधरी जी आपके और सभी साथियों को नवरात्रि की ढेरों बधाई और आपको बताएं कि आपने जो हिमाचली टोपी लगा रखी है ना हमने भी वो हिमाचली टोपी खरीदी है जब हम वहाँ गए थे उत्तराखंड और उसमें हमने फोटो भी खिंचवाया है और सोशल मीडिया पर डाला भी है कमाल की अच्छी लगती है मज़ा आता है पहनकर सो थैंक यू आप हमारा साथ दे रहे हैं फारूक मोहम्मद जी को अमिताभ बच्चन के गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं तो सच्ची इंजॉय कीजिए प्रीति कहती है कि आप उत्तराखंड हो आई मैं भी देहरादून की हूँ आप वहाँ गई थी क्या मैं देहरादून तो नहीं गई और आपको लग रहा है कि मैंने हेलीकॉप्टर से दर्शन किए होंगे तो जी नहीं मैंने वहाँ पैदल चढ़कर भगवान के दर्शन किए हैं 22 किलोमीटर मैंने वॉक किया है और ये शक्ति मुझे जय शिव शंभू ने ही दी सो यस आई वॉक्ड और इसके अलावा हमारे साथ है मालती जी जो प्रोग्राम सुन रही हैं पसंद कर रही हैं और आपने लिखा है कि गीता बहन भी हमें सुन रही हैं तो गीता बहन आपका भी स्वागत है मिसेस पेके चियान आप हमारे साथ हैं बिमला दवैंग जी आपने बताया है कि आज नेपलीज सेलिब्रेट कर रहे हैं दशैन और ये फेस्टिवल आज से ही शुरू होता है जिसका नाम है गथा मैं सही नहीं पढ़ पा रही हूँ क्योंकि वो ऐसे लिखा है मैं पता करके आपको सही से बताऊंगी लेकिन आज का जो आपका फेस्टिवल है 10 दिन चलने वाला है आपको उसकी सबको ढेरों बधाइयाँ इसके अलावा जैस्मीन हमारे साथ हैं टोरंटो से उल्लास जुड़े हैं तोची जी हैं दिनेश पोपट रितेश मोहम्मद अयूब चौहान मीरा जी अरुणायन भूपेंद्र पटेल मुकेश पटेल गीता जी अमिता जी उषा जी विनोद जी कहते हैं हमें आपका अनुभव सुनकर बहुत अच्छा लगा उत्तराखंड का सो थैंक यू प्रतिभा जी रानी जी स्लाव से अरुणा जी विजय गुडूरी जी सहर शरफून महेंद्र पटेल शेखर जी जासू जी हमारे राजेश जी मनीषा शाह रोशनी दिव्या जी हर्ष जी लेस्टर में सुन रहे हैं कहते हैं नवरात्रि की आप सभी को ढेरों बधाइयाँ साथ में है मृदु जी हमारी पुनीता जी हरीश खत्री जी शवि जी अविनाश पटेल और जितने भी साथी जहाँ कहीं भी मेरा साथ दे रहे हैं सभी का स्वागत है और लीजिए सूरज जी भी निकल आए बादलों से साउथ हॉल से सूरज जी का भी मैसेज आया है तो चलिए क्या करें अगला गाना आप सबको डेडिकेट कर दें ठीक है चलिए
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 आज आपको देगा 127.5 भारतीय रुपए और याद रखिए ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा via SBI branch online by using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions भी लागू होंगी.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.com.
2: ये है
1: लाइका रेडियो Make your celebration special with Falcon Festive Offers.
2: Falcon Chakki Atta 10 kilos plus Suhana Basmati Rice 5 kilos, both for $11.99. Falcon Red Lentils 1.5 kilos, 2 for $3.50. Falcon Broken Cashew Nuts 600 grams, just $2.99. Sunfeast Dark Fantasy Biscuits 150 grams, only 99 pence each. And Samara Premium Tea 1 kilo, $3.99.
1: Aur shopping ke saath paye Star Tours ke holiday packages aur Malabar Gold and Diamonds ki taraf se gold coins jeetne ka mauka. Falcon Cash and Carry. Visit 82A Syston Street, Leicester, LE12JU, 2A Rowlett's Hill, Leicester, LE54UN, or Falcon Supermarket, 135 Carlton Road, Nottingham, NG32FN. Happy Diwali!
3: Dubai is an opportunity to now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danu Properties Dubai has something for everyone.
4: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
5: Dubai is the place. 11,
4: 11. Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
6: Danu 11, 11. Danu Properties. Danu 11, 11.
7: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
8: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
7: Live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
8: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
7: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
8: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
9: London, are you ready? Raga Events presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
10: For 15 years, Jannan has been part of your story. Across generations, across cultures, across every style. For everyday moments, special occasions, celebrations and new beginnings. Because style has no age, no background and no boundaries. 15 years of Jannan. For you, for us and for everyone. The Jannan and J-Dot anniversary sale up to 70% off is now on. Visit our stores nationwide, including Birmingham and Leicester. Or shop the sale online at jannan.com and junaidjamshed.co.uk.
11: Citybond Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
12: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
11: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
12: Also explore 2026 cruises.
11: From Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call Citybond Travel on 01162 167 225. We're at all protected.
4: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
13: Fancy winning something tasty on the side?
14: Order at Pepe's through the app and you could win tech vouchers instantly. And there's more.
13: Every order enters our monthly prize draw to win a gaming bundle, a brand new console, wireless headset, gaming chair, smart speaker and mini fridge.
14: So order your Pepe's flame grilled, piri piri, Pepe-licious flavour and you could win big.
13: Pepe's. Win big. T&Cs apply.
15: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to just say everything in English, but louder.
16: Four beers, please, garçon!
15: If only there was a way that could work with your advertising campaign. Well, there is. And you're listening to it. Because when you amplify your advertising with radio, 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
17: From Yardley to Walsall, Leica Radio is now broadcasting throughout Birmingham on full-scale DAB. This is Leica Radio Midlands.
18: आज नवरात्रि का पहला दिन है. इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है. मान्यता है कि माँ को गाय के घी का भोग अर्पित करने से आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है और जीवन के संकट दूर होते हैं. प्रार्थना की अब घड़ी आ गई. माँ शैलपुत्री आपके द्वार आ गई. होगी अब मन की हर मुराद पूरी. भरने सबकी झोली माता रानी आ गई. लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं. जय माता दी.
19: Navratri special on Laika, brought to you by Tilda. Tilda Basmati, bringing a taste of home to every celebration. Loved by generations since 1970.
17: Feel good track, brought to you by Dairy Valley.
20: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: किशोरदा की आवाज में अमिताभ बच्चन पर पिक्चराइज ये गाना आपने सुना लावारिस और मैं आपको सुनवा रही हूं जोड़ी नंबर 1 वैसे तो आज का पूरा ही शो लगभग जोड़ी नंबर 1 है क्योंकि अमिताभ बच्चन के लिए ज्यादातर गाने किशोर कुमार ने ही गाए हैं लावारिस फिल्म से लिया था ये गाना जिसमें म्यूजिक था कल्याण जी आनंद जी का और क्या गाना बनाया है केबीसी में भी हम देखते हैं जब अमिताभ बच्चन से कोई उनकी तारीफ करता है और बातें करता है और अचानक से ये धुन बजने लगती है तो अपने आप ही हम थिरकना शुरू हो जाते हैं कुछ ऐसा ही जादू है अमिताभ बच्चन के फिल्मों का और इसीलिए वो आज तक इतने पॉपुलर नहीं है मतलब आज तक इतने पॉपुलर हैं और राज आपका मैसेज मिला है आपने सही लिखा है कि वो इस सदी के लास्ट रियल सुपरस्टार हैं क्योंकि उन्होंने जो जगह पाई है आई डोंट थिंक सो कि अब कोई और उस जगह पहुंच पाएगा क्योंकि अब दौर बिल्कुल ही बदल चुका है फिल्में तो आजकल चलती ही नहीं एक हफ्ता भी चल जाती है तो उसे हिट मान लिया जाता है और हमने सुना है कि पुराने ज़माने में तो फिल्में दो दो साल तक सुपरहिट रहा करती थी तो ज़माना बिल्कुल बदल गया है और आपका मैसेज मैंने पढ़ा है थैंक यू आपने जिन फिल्मों के बारे में बोला है उनके सारे गाने मैं सुना चुकी हूँ और आपने मुझे लेट सुनना शुरू किया अब बताइए मैं क्या करूँ एनीवेज अगले जो गाने बजने वाले हैं ना उन्हें एंजॉय कीजिए और जानकर मुझे अच्छा लग रहा है कि आप मुझे सुन रहे हैं और मेरा साथ भी दे रहे हैं
1: Brought to you by Derry Valley. Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Leica Radio. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: क्या गाना बनाया है आरडी बर्मन ने और किशोर कुमार की आवाज ने इस गाने में चार चांद लगाए हैं। फिल्म है बेमिसाल जिसे ऋषिकेश मुखर्जी ने बनाया था। अमिताभ बच्चन के साथ राखी और विनोद मेहरा इस फिल्म में थे, लेकिन ये फिल्म ज़्यादा पसंद नहीं की गई थी, हिट फिल्म नहीं थी, लेकिन गाने मुझे तो तब भी पसंद थे और आज भी इस फिल्म के गाने बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। एक गाना अभी आपको सुनवाया और इसके अलावा एक और बात कहने वाली थी, निकल गई ना दिमाग से, लेकिन चलिए सुशीला जी का मैसेज पढ़ लेते हैं। और आपने लिखा है कि जय श्री कृष्णा, आपका चारधाम यात्रा कैसी रही? तो मैं चारधाम तो की नहीं, सिर्फ बद्रीनाथ और केदारनाथ की, गंगोत्री जमुनोत्री बात के लिए छोड़ दिया क्योंकि 6 दिन में सब जगह नहीं जा सकते और उत्तराखंड में इतनी सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए। मैं माणा गांव नहीं जा पाई जो भारत का पहला गांव है जहां पर सरस्वती नदी का उद्गम है, गणेश गुफा है जहां, वो बंद हो गया था लैंडस्लाइड के कारण तो हम वहां भी नहीं जा पाए। हालांकि वो बद्रीनाथ से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर था पर वो भी छूट गया। धारी देवी के दर्शन भी छूट गए क्योंकि वहां पर 12 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ था लैंडस्लाइड के कारण तो वो भी नहीं देख पाए। पंच केदार भी नहीं जा पाए क्योंकि वहां जाने में भी बहुत समय चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि भाई मेरी तो बहुत चीज़ें छूट गई हैं, इसलिए दोबारा कभी जब भगवान बुलाएंगे तो जाऊंगी और इन सब चीज़ों को देख कर आऊँगी। लेकिन अगर आपके पास समय है और आप वहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं तो अच्छा समय लेकर जाइए क्योंकि वहाँ कच्चे पहाड़ हैं और बारिश पहाड़ों में बहुत होती है। बादल छुप छुप कर बैठे रहते हैं पहाड़ों में, कभी भी बरस जाते हैं जब मन होता है। तो लैंडस्लाइड का खतरा नहीं रहेगा, आप मिस कर देंगे कुछ ये भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इसलिए अगर आपके पास समय है और आपके पास अच्छी सेहत है और भगवान का दिया हुआ लक्ष्मी है धन है तो अच्छा समय लेकर वहाँ जाइए। बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं, वहाँ बढ़िया समय बिताइए, मौसम भी बहुत शानदार है और अपना देसी खाना तो अवेलेबल है ही, घूम फिर कर आइए। ये मेरा सजेशन है और आने वाले टाइम में जब मैं कभी जाऊँगी तो मैं भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखूंगी।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes. This is Ritu Sharma.
2: बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड, मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड, रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड पर सुनिए मंडे टू फ्राइडे।
0: आपको बता दें कि इस बार का जो लाइका एक्स्ट्रा का पॉडकास्ट है उसका एपिसोड आ चुका है और इस बार का टाइटल है लाइक अ मैन अनफिल्टर्ड, जिसमें बहुत सारी बातें हैं आप सुन सकते हैं किसी भी लीडिंग प्लेटफॉर्म पर जाकर जहाँ पर लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल है।
1: All the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. This is Leica Radio.
3: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.

0: बप्पी दा आशा भोसले किशोर कुमार की आवाजों में शराबी फिल्म का था ये गाना और इस गाने को सुनकर संध्या भाव सर कहती है मुझे भी 9 लाख चाहिए तो भाई 9 लाख चाहिए तो अपने पति देव से मांगिए मैं तो सिर्फ आपको गाना सुनवा सकती हूँ 9 लाख नहीं दे सकती हूँ लेकिन आप हमारा साथ दे रही हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड मालती जी कहती हैं कि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा बिल्कुल है जी जब तक जिंदा है जब तक साथ रहेगा ही रहेगा एंड इसके अलावा निर्मला जी आपको ये गीत पसंद है चलिए आपको भी डेडिकेट करते हैं और फिर से हमें पता चला है कि ढेरों मैसेजेस मिले हैं साथी हमारा साथ दे रहे हैं तो बस सुनते रहिए प्रोग्राम का आखिरी घंटा आ गया पता ही नहीं चला और इतने सारे गाने मैंने बजाए मुझे तो बहुत मजा आ रहा है इन गीतों को सुनकर और साथ ही साथ हमारी मिसेस पे के चियांग कहती है ऋतु मुझे भी बहुत मजा आ रहा है आपके साथ तो बस 1 बजे तक तो आप मेरा साथ देते ही रहिए क्योंकि अभी कुछ और भी गाने मैंने ऐसे सेलेक्ट किए हैं जिनको सुनकर आपको मजा ही आएगा लेकिन इस आवर में हम गेम खेलते हैं 3 वर्ड्स गेम खेलते हैं पता है ना कि भूल गए 3 हफ्ते में चलिए हम इस हफ्ते में क्या कर रही है ऋतु मतलब प्रोग्राम का जो लास्ट आवर होता है उसमें हम सैटरडे संडे दोनों दिन गेम खेलते हैं जिसे कहते हैं 3 वर्ड्स गेम और जिसमें मैं आपको 3 वर्ड्स देती हूँ किसी हिंदी फिल्मी गाने से और आपको पहचानना होता है कि गाना कौन सा है और आप सब पहचान लेते हो हमेशा ही क्या बात है आपके लिए तालियां तो आज के जो 3 वर्ड्स हैं पहला है सूरत दूसरा वर्ड है मंदिर और तीसरा वर्ड है मूरत 1972 में आई थी ये फिल्म मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है एस डी बर्मन का म्यूजिक है बहुत ही प्यारा गाना है बताइए जरा कौन सा गाना है सूरत मंदिर मूरत 1972 की फिल्म रफी साहब की आवाज एस डी बर्मन का म्यूजिक कौन सा गाना है पता चल गया चलिए फिर भेजिए अपना मैसेज हमारे इस नंबर पर
1: WhatsApp Leica Radio Midlands now on 07404-793-719. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो £1 आज आपको देगा 127.5 भारतीय रुपए और याद रखिए ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा via SBI branch online और by using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions भी apply होंगी.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. Yeh hai Leica Radio.

0: कितना प्यार तुम्हें करते हैं आज हमें मालूम हुआ। क्या खूबसूरत गाना है, क्या खूबसूरत धुन बनाई है आनंद मिलिंद ने और उस पर आवाजें कुमार सानू और साधना सरगम की। आनंद मिलिंद मेरे बहुत फेवरेट वाले म्यूजिक डायरेक्टर हैं और इन्होंने 90s के दौर में इतने सुंदर गाने बनाए कि बस कभी मुझे मन करता है कि सारे के सारे गाने इन्हीं के बजा दूं, लेकिन सबका ख्याल रखना पड़ता है ना, सबकी पसंद के लिए गाने बजाने पड़ते हैं, इसलिए रुक जाती हूँ। लेकिन गुरुदेव गांजा, आपको गाने पसंद आ रहे हैं जानकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारा थ्री वर्ड्स गेम भी चल रहा है, बहुत सारे साथियों ने सही जवाब दे दिया है। कुछ साथी कहते हैं कि हमने थ्री वर्ड्स मिस कर दिए हैं, तो चलिए एक बार फिर से बोल देती हूँ। आज के जो तीन वर्ड्स हैं उसमें पहला वर्ड है सूरत, दूसरा वर्ड है मंदिर, तीसरा वर्ड है मूरत। 1972 की फिल्म है, मैंने कहा था मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है लेकिन उनके साथ लता जी की आवाज़ भी शामिल है। थैंक यू विजय जी, आपने कहा आप लता जी को भूल गई। रफ़ी साहब तो हैं, साथ में लता जी भी हैं और SD बर्मन का म्यूजिक है। कौन सा गाना है बताइए, अगर आपको पता है तो नंबर तो आप हमारा जानते ही हैं। और तब तक मैं शुरू कर देती हूँ आज के ब्लैक एंड वाइट क्लासिक का सिलसिला।
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
0: लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ दे दें जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। लखविंदर वडाली लंदन में परफॉर्म करने जा रहे हैं, पंजाबी लेजेंड जिनके गाने जिनकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद है, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड इस शो के लिए। दिस फ्राइडे 16th अक्टूबर को एट क्रिस्टल ग्रैंड स्लाव और संडे को 18th अक्टूबर एट ICC बर्मिंघम में परफॉर्म करने वाले हैं। और अगर आप भी इनके फ़ैन हैं, इनकी आवाज़ के इनके गीतों को पसंद करते हैं तो फ़ौरन टिकट्स बुक कराइए। लखविंदर वडाली लाइव इन कॉन्सर्ट इन लंदन एंड इन बर्मिंघम।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: और अब आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का पहला गाना।

0: बिल्कुल गाना रफी साहब की आवाज में 1960 की फिल्म काला बाजार से लिया था जिसमें एस टी बर्मन का म्यूजिक था जिसे आपने सुना लाइका रेडियो नेटवर्क से और ये था हमारे आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का पहला गाना
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: अब बारी है दूसरा गीत सुनवाने की लेकिन उससे पहले पुष्पा चौहान जी थैंक यू मैं बिल्कुल अच्छी हूँ आपको भी नवरात्रि की बधाइयाँ और संध्या भाव सर क्या बात है सारे के सारे गाने मेरे नाम कर दो बिल भिजवाती हूँ हर गाना आप अपने नाम करवा रही हो है चलिए थैंक यू साथ दे रही हैं बहुत अच्छा लगा और आपको बता दें कि कविता कृष्णमूर्ति लेजेंड कविता कृष्णमूर्ति परफॉर्म करने वाली है लाइव एट द रॉयल अल्बर्ट हॉल ऑन संडे 1 नवंबर और ये आपके लिए लेकर आए हैं सनातन इवेंट्स एज ए दिवाली स्पेशल टिकट्स आप बुक कर सकते हैं वेन्यू बॉक्स ऑफिस पर जाकर और इसके एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स हैं हम यानी कि लाइका रेडियो नेटवर्क
1: द रितु शर्मा शो ऑन लाइका रेडियो This is Ritu Sharma. Laika Radio. Part of the largest Asian commercial radio network in the UK.
3: Aap yun hi agar humse milte rahe dekhiye ek din pyar

0: एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म से लिया था ये गाना जिसमें ओपी नैयर का म्यूजिक था और ये था हमारे आज के ब्लैक एंड वाइट क्लासिक का दूसरा गाना और इस गाने को नाम करते हैं उन सभी के जिन्हें पसंद है जिसमें शामिल है विजय गुडूरी बॉबी जी करसन पंडोरिया जैस्मीन स्वीटी कालराजी चंदू शाह पूरन कपूर रोशनी जी थैंक यू आप सभी के मैसेजेस के लिए और अब समय आ गया है कि बता दूं किन साथियों ने सही सही जवाब दिया है हमारे आज के थ्री वर्ड्स गेम वाले सवाल का मनीषा शाह विजय गुनोवा जी संध्या भावसर चंदू शाह विजय गुडूरी दिव्या जी हैरो से करसन पिंडोरिया मालती जी उल्लास टोरंटो से भारत गंगा राम जी अर्जुन जी महेंद्र बजारिया जी किरण हैरो से नरेन पटेल दिनेश पोपट जी नीलकंठ बॉकिंगम से सहर यास्मीन बानो शुमिला मंगर तोची एन उषा खोड़ा और अब सबने सही जवाब दे ही दिया है तो बता दे बजा देती हूँ आज के थ्री वर्ड्स गेम वाला गाना
1: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: लेकिन उससे पहले याद दिला दें कि कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं तो Southall Travel को कॉल कीजिए उनके पास अफोर्डेबल दुबई ऑफर चल रहे हैं जिसमें एक्सक्लूसिव डील्स हैं सेलेक्टेड पार्टनर होटल्स की जिनके साथ डायरेक्ट फ्लाइट्स भी है Emirates की जस्ट £629 पर पर्सन फॉर थ्री नाइट्स ट्रेवल्ड बाय 10th दिसंबर कॉल कीजिए Southall Travel को 0208-843-4444 और विजिट कीजिए southalltravel.co.uk पर
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive.
2: Yeah. Like our radio.

0: This is Leica Radio.
1: हांजी हांजी, आप सब लोगों को नवरात्रि की शुभ शुभकामनाएं. इफ सेलिब्रेटिंग नवरात्रि, हैप्पी नवरात्रि. और नवरात्रि एक ऐसा जो है एक फेस्टिवल है जिसमें सब लोग मस्त मगन होते हैं. एंड इफ यू आर फास्टिंग, सो वेल डन. आई हैव टू से दैट इट्स इंक्लूडिंग मी, आई एम फास्टिंग टू. और बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम चल रहा है. एंड टुडे वी वर्शिप माँ एज शैलपुत्री. आज बेसिकली पहला नवरात्रा है. द डॉटर ऑफ द हिमालयाज, जिन्होंने हमेशा स्ट्रेंथ, प्योरिटी और डिवोशन की ही बात की थी. ओम देवी शैलपुत्री आय नमः. एंड इफ यू आर सेलिब्रेटिंग नवरात्रि, डू लेट मी नो. नवरात्रि के साथ बहुत सारा डिटॉक्स खाना भी आता है. बहुत सारे जो है कलरफुल नवरात्रि के साथ डांडिया भी आते हैं, गरबा भी आते हैं. एंड यस, यू कैन डेफिनेटली लेट मी नो इफ यू आर गोइंग आउट एंड अबाउट एंड सेलिब्रेटिंग नवरात्रि एंड डूइंग द गरबा एंड वेयर यू आर गोइंग, दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. और आज का तो दिन है जिस बेसिकली यू नो टेल्स यू अबाउट द स्ट्रेंथ, द स्ट्रगल्स एंड ऑब्वियसली गिव्स यू एन इंटीमेट रीजन, एन इनडेफिनेट रीजन टू स्ट्रगल एंड देन राइज विद दैट स्ट्रगल एंड राइज विद द करेज थ्रू एवरी चैलेंज इन योर लाइफ. तो जितने भी लाइफ में चैलेंजेस हैं ना, उनको एक साइड पर रखिए और अच्छे तरीके से अपनी नवरात्रि को सेलिब्रेट किए. और बेस्ट पार्ट अबाउट इस, जो भी लोग ये 9 days की फास्टिंग कर रहे हैं, इट्स एक्चुअली सात्विक डिटॉक्स एंड लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग इट एंड लॉट ऑफ पीपल आर मेकिंग दीज डेज. इफ़ यू गो टू ऑल दी सोशल मीडिया, कितनी सारी चीज़ें आजकल तो बना लेते हैं, बट वो जो सिंपल साबुदाने की खिचड़ी और वो जो व्रत के चावल होते हैं, दैट आई थिंक इज ऑलवेज द बेस्ट वन. एंड आलू, लॉट ऑफ पीपल ईट आलू राइट. Have the Sattvic diet, enjoy and do lot of garba, lot of dancing and we're going to do that also in the next few songs. But pehle Jai Mata Di bol dein aur uske baad let's rock.
0: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
1: This Gana is very peaceful, very devotional. On the vocals of Jubeen Nautiyal for the Navratri special. Meri maa ke barabar koi nahi. Let's hear it together and enjoy the festive period with your

0: रंग तारी रंग तारी सेलिब्रेट द एनर्जी द रिदम एंड द डिवोशन ऑफ नवरात्रि इट्स ऑल अबाउट द डांसिंग गरबा राइट Spinning through the night with joy and grace. Hope you are doing that. And yes, in fact, बहुत सारे लोगों का गरबा is definitely a cardio as well. And whenever I watch people doing garba, I always feel like इतनी energy आती कहाँ से? वो कहते हैं ना माता रानी देती है वो energy. So keep calm and garba is on. And let me know where you are celebrating that. Or definitely. काफ़ी लोग जो है इसे वर्कआउट भी करते हैं बट देयर इज अ डिवोशनल एलिमेंट टू इट एज वेल स्पिनिंग इन डिवोशन एंड डांसिंग इन ग्रेस दैट्स व्हाट इट इज ऑल अबाउट और ये सिर्फ एक डांस नहीं है इट्स अ डिवोशन इन मोशन दैट्स व्हाट आई थिंक अबाउट एंड वो कहते हैं डांस द गुजू है एंड दैट्स द गुजू वाइब एंड एवरी वन आउट देयर यू नो कोई भी हो चाहे पंजाबी हो गुजराती हो मराठी हो एवरी वन लव्स डांडिया एवरी वन लव्स डूइंग गरबा यू लेट मी नो कि अगर आप नॉन गुजु हैं और फिर भी आप जो है गरबा करते हैं और कैसा करते हैं
1: ये है
2: Like our radio.
1: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: It's time for holidays. Yes, we all need them. Travel to Dubai without a heavy price tag. Southall Travel Affordable Dubai offers combined exclusive deals at selected partner hotels with the direct flights with Emirates from just £629 per person. For three nights. Travel by 10th of December. Call Southall Travel on 0208-843-4444 or visit southalltravel.co.uk.
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.
3: Hey, it's Niraj here and you can catch me on the Sunday Showdown, charging things up for the first 2 hours and then taking it nice and smooth. Every Sunday, 7 to 10pm on Like Radio Greater London and Like Radio Midlands.
0: And when it comes to Dandiya, I have to play one song. The Dandiya Queen. One and only Falguni Pathak.

0: मोटर सूथिंग सॉन्ग द ट्रेंडिंग ट्रैक ऑफ द वीक ये प्रेम मोलिया द टाइटल ट्रैक फ्रॉम एन अपकमिंग मूवी ये प्रेम मोलिया एंड दिस इज अंडर द राजी प्रोडक्शन एंड सूरज बरजातिया एंड ये जो है 27 नवंबर को आने वाली है स्टारिंग यस इस बार प्रेम सलमान का नहीं है इट्स गोना बी आयुष्मान खुराना हु इज गोना बी प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ प्रेम एंड शावरी जो कि है बहुत ही खूबसूरत लग रही है इस मूवी में एज ऑलवेज सो देखते हैं ये प्यार की सिंप्लिसिटी दोबारा से स्क्रीन पर कैसा वो बिहेव करेगी आई एम श्योर इट्स गोना बी अ ब्लॉकबस्टर बिकॉज ऑब्वियसली बरजातिया जी की फिल्म में देयर इज ऑलवेज दैट सिंप्लिसिटी एंड द ऑनेस्टी एलिमेंट व्हिच वी ऑल आर मिसिंग
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Looking at currency update today, £1 is going to fetch you 128.12 Indian rupee, 366.61 Pakistani rupee, 437.79 Sri Lankan rupee, 162.97 Bangladeshi taka, 85.90 Afghan Afghani and 1.32 US dollars.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Leica Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits. Feel Good Track. Brought to you by Dairy Valley.
3: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ जहाँ भी हैं खुश हैं, खैरियत से हैं, ज़िंदगी के हर पल को एंजॉय कर रहे हैं, हमेशा तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें। ये दुआ, ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूँगी। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग टू वेल, गेट वेल सून। इफ़ यू आर फीलिंग बिट डाउन, तो कम ऑन, चीयर अप। लाइफ इज़ टू लिव, लाइफ इज़ टू इंजॉय। जी और शान से मुस्कुराते, गुनगुनाते, चहकते, महकते और थिरकते हुए गाने चुन चुन कर लाई है सरिता सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए। आपके मन को भा जाएंगे तो मुझे खुशी होगी, और इस कैसे खुशी होगी, जब मुझे एहसास दिलाएंगे आप कि आप मेरे आसपास हैं, मेरे साथ साथ हैं, मैं अकेली स्टूडियो में ऐसे ही माइक्रोफोन के पीछे से बोल नहीं रही हूँ। मैं आपका मनोरंजन करने में कितने प्रतिशत का मैं कामयाब होती हूँ, इसका भी मुझे तभी पता चलता है जब आपके मैसेजेस धड़ाधड़ धड़ाधड़ स्क्रीन पर गिरते रहते हैं। थैंक यू एवर सो मच, कितने सारे मैसेजेस ऑलरेडी मुझ तक पहुंच गए हैं। तहे दिल से आप सबकी शुक्रगुजार हूँ, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, और मैं चाहूँगी ये प्यार, ये मोहब्बत इसी तरह से बनी रहे और ऐसे ही आप सरिता को अपने दिल में जगह देते रहें। आज ख़ास दिन है, और ख़ास दिन ये है कि आज से नवरात्रि शुरू हुए हैं। आप सभी बहन भाइयों को नवरात्रि की शुभकामनाएं, माता रानी की छत्र छाया आपके सर पर हमेशा रहे, उनका आशीर्वाद रहे, आपके सभी काम सीधे होते रहें और आपके घर परिवार में सुख समृद्धि और यश रहे हमेशा। बच्चों में प्यार, माँ बाप में प्यार और सारे रिश्तेदारों में भी प्यार बना रहे और माँ की कृपा हमेशा आपके साथ रहे। ये तो थी वे माता की नवरात्रि की शुभकामनाएं मैंने आप तक पहुँचाई। और आज ख़ास दिन ये भी है कि आज कौन सदी के महानायक जिन्हें माना जाता है, वो हैं अमिताभ बच्चन। आज अपना बर्थडे मना रहे हैं। आज का दिन बेहद ख़ास है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उस शख्सियत की जिनकी आवाज़ में जादू है, जिनकी आंखों में है अभिनय की गहराई और जिनके पर्सनालिटी में बसता है पूरे हिंदुस्तान का प्यार। जी हाँ, बात हो रही है बॉलीवुड के शहंशाह, सदी के महानायक, महान अभिनेता अमिताभ बच्चन जी की। 11 अक्टूबर 1942 में 1942 में जन्मे अमिताभ बच्चन जी ने अपने शानदार अभिनय, दमदार आवाज़, इतनी डेप्थ है उनकी आवाज़ में, और बेमिसाल मेहनत से भारतीय सिनेमा में एक ऐसी पहचान बनाई जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। जंजीर से लेकर जितनी भी फिल्मों में उन्होंने काम किया है, सभी यादगार फिल्में हैं। जंजीर से मिली नई पहचान हो या दीवार का यादगार अंदाज, शोले का जय हो या डॉन का दमदार किरदार। इनफैक्ट आज मैं डॉन थोड़ी थोड़ी देख रही थी, बीच बीच में अपने काम कर रही थी लेकिन डॉन दिखाई जा रही थी टेलीविज़न पर, तो थोड़े भूली बिसरी यादें ताज़ा भी हो गई। अमिताभ बच्चन जी ने हर भूमिका को अपने अभिनय से अमर बना दिया। उनकी आवाज़ की बात ही कुछ और है। जब उनकी आवाज़ गूंजती है तो लगता है जैसे हर शब्द अपने आप में एक कहानी कर रहा हो। वैसे अमित जी ने सिर्फ फिल्मों में अपने डायलॉग्स नहीं बोले हैं, बहुत सी फिल्मों में इन्होंने कमेंट्री या बैकग्राउंड में जो आवाज़ होती है वो उन फिल्मों में अपनी आवाज़ देकर भी उन फिल्मों को की इंट्रोडक्शन को भी काम बहुत बहुत एक अलग सी पहचान दे दी है। और ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जैसे लगान ही है। एंड लेकिन अमिताभ बच्चन जी की कहानी सिर्फ कामयाबी की कहानी नहीं है, ये कहानी है संघर्ष की, असफलता। जी हाँ, बहुत सी असफलताएं भी मिली हैं उन्हें। बहुत पहले पहले तो लोग उन्हें कहते थे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के, अरे इतने लंबे हो, टांगे कटवा के आओ, दिस एंड दैट, बहुत कुछ सुनने को उन्हें मिला था। कौन सी हीरोइन तुम्हारे साथ काम करेगी, तुम इतने लंबे हो, वो सब छोटे कद की हैं। पर देखिए ना, जब ऐसी असफलताएं मिलती हैं तो उनसे लड़ने के लिए जज्बा भी आ जाता है हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर लौटने की उनमें एक क्षमता रही उन्होंने हमें सिखाया कि जिंदगी में मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाएं हौसला और मेहनत कभी नहीं छोड़नी चाहिए और कौन भूल सकता है उनका लोकप्रिय अंदाज उनकी गंभीर आवाज कौन बनेगा करोड़पति के मंच से उनका आवाज गूंजती है और इतना अच्छा लगता है इतना अपनापन लगता है और जो हर घर तक पहुंचता है बहुत सी बातें हैं जो करना चाहूंगी अपनी उनसे मुलाकातों के बारे में भी बात करना चाहूंगी लेकिन बाकी के काम करना भी बहुत जरूरी है
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: जी हाँ, अगर SBI UK के जरिए पैसे ट्रांसफर कराना चाहते हैं इंडिया में कहीं भी, तो काम बहुत ही आसान है. You can walk into the branch, you can go online और SBI Yono mobile app download किया हुआ है, तो उसके जरिए घर बैठे पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं. Terms and conditions are always there and आज आपका one British sterling pound can get you 127 rupees and 50 paisas.
1: Of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Sarita Summerwall with the biggest classics on Leica Radio. Make your celebration special with Falcon Festive offers.
2: Falcon Chakki Atta 10 kilos plus Suhana Basmati Rice 5 kilos, both for $11.99. Falcon Red Lentils 1.5 kilos, 2 for $3.50. Falcon Broken Cashew Nuts 600 grams, just $2.99. Sunfeast Dark Fantasy Biscuits 150 grams, only 99 pence each. And Samara Premium Tea 1 kilo, $3.99.
3: Aur shopping ke saath paye Star Tours ke holiday packages aur Malabar Gold and Diamonds ki taraf se gold coins jeetne ka mauka. Falcon Cash and Carry. Visit 82A. Syston Street, Leicester, LE12JU, 2A Rowlett's Hill, Leicester, LE54UN, or Falcon Supermarket, 135 Carlton Road, Nottingham, NG32FN. Happy Diwali!
4: Lester na Little Garba Stars taiyar thai jao. KDR Events and Beach Promotion proudly presents Kids Garba 2026 with Live from India. Saturday 17th October, Bapore 1 thi 4 at Avanti Field School, Lester. 1 thi 10 varsh na kids mate entry just £5. Tickets available from Ticket Source or call PHL 07957477330. Masti, music and a full on Garba fun. Radio partner, Leica Radio.
5: Janan. For 15 years, Janan has been part of your story. Across generations, across cultures, across every style. For everyday moments, special occasions, celebrations and new beginnings. Because style has no age, no background and no boundaries. 15 years of Janan. For you, for us and for everyone. The Janan and J. Dot anniversary sale up to 70% off is now on. Visit our stores nationwide, including Birmingham and Leicester. Or shop the sale online at janan.com and junaidjamshed.co.uk.
6: Something new has just landed at Cake Box. Nationwide delivery is here. Now you can send a personalized cake box straight to someone special, wherever they are. Birthday miles away? Send a cake. Big congratulations? Send a cake. Just want to make their day? Send a cake. And because it's new, delivery is free for a limited time only. Wherever they are, be part of their celebration. Cake Box Celebrations, now delivered nationwide. Order now at cakebox.com.
7: New at Pepe's.
8: Pepe's Melts.
7: Flame grilled flavour, toasted to order. Choose chicken melt with flame grilled chicken, melted cheese and flavour packed toppings in toasted focaccia.
8: Or go for paneer melt with the same Pepe-licious flavour. Choose smoky barbecue cheese or fresh tomato salsa cheese.
7: Chicken or paneer, barbecue or salsa. Your melt, your way.
8: New melts, only at Pepe's.
1: It's Navrati. Best wishes from the Leica Radio Network. Keep listening to special programming sponsored by Tilda, Star Tours and Jamin Food. This is the largest commercial Asian radio network in the UK.
9: Street food ka asli maza lo quality street food Leicester par. Try kijiye crispy pani puri, spicy vada pav aur delicious pav bhaji. Sab kuch fresh aur tasty. Light khana hai to hamare cheesy sandwiches aur kid friendly treats try kijiye. To milte hain 62 to 64 Belgrave Road, LE4 5AS. Call on 0116-332-5100 aur menu online bhi check kar sakte hain. Quality street food Luton and Wembley mein to hai, lekin ab asli Indian flavors Leicester mein.
10: If I'm going out on my new paddleboard, the last thing I'm taking is my phone, right? Buoyancy aid? Fine. But mobile? My whole life's on that phone. Why would I risk losing it in the... Coast Guard! Help!
11: Okay, help's on its way.
12: Grab my hand!
13: Phone. In a waterproof pouch. It's the first thing I pack now.
14: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please, respect the water.
15: Uncle G spent £40,000 on rent, but zero online. His shop is empty. His nephew's TikTok is booming. Be seen. Visit heartyhanks.com. Hearty Hanks. Outdated is out of business. Visit heartyhanks.com today.
16: आज नवरात्रि का पहला दिन है। इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मान्यता है कि माँ को गाय के घी का भोग अर्पित करने से आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है और जीवन के संकट दूर होते हैं। प्रार्थना की अब घड़ी आ गई, माँ शैलपुत्री आपके द्वार आ गई। होगी अब मन की हर मुराद पूरी, भरने सबकी झोली माता रानी आ गई। लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।
2: नवरात्रि स्पेशल ऑन लाइका ब्रॉट टू यू बाय स्टार टूर्स। स्कॉटलैंड जाना है तो स्टार टूर्स के साथ ही जाना है। स्टार टूर्स, ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन।

0: Like a Gold. Officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com. Feel Good Track. Brought to you by Derry Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit derryvalley.net.
2: Kishore Da and Asha Bhosle ji ki awaaz hai, Smita Patil and Amit ji par ye gana picturized hua tha. जैसे कि मैंने पहले कहा था बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी लेकिन देखती हैं वक्त कहां तक इजाजत देता है अमित जी आपको जन्मदिन की ढेरों बधाई है ईश्वर आपको हमेशा स्वस्थ रखे खुशियां दे लंबी उम्र दे आप यूं ही अपनी कला से करोड़ों दिलों को रोशन करते रहें बहुत से मेरे साथी मैसेजेस लिखकर भेज रहे हैं थैंक यू एवर सो मच

0: 1982 में आई इस फिल्म ने दर्शकों को कॉमेडी, ड्रामा, रोमांस और एंटरटेनमेंट का ऐसा तड़का दिया था कि आज भी इसके गाने और डायलॉग्स लोगों के दिलों में जिंदा हैं। और अमिताभ बच्चन का किरदार अर्जुन सिंह, नमक हलाल का ये गाना था। अर्जुन सिंह एक सीधा साधा भोला भाला लेकिन अपने ही अंदाज में कमाल का इंसान था, जो अपनी बात कहने के लिए किसी बड़े शब्दकोश का इस्तेमाल नहीं करते थे। आपको याद है वो जब आई कैन टॉक इन इंग्लिश, वॉक इन इंग्लिश वाला डायलॉग क्या कितना फेमस हुआ था? इनकी एक्टिंग का जवाब ही नहीं। अमित जी को बहुत बहुत बधाई।
1: Brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Ye hai Leica Radio.
4: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
0: जैसा कि मैंने कहा कि आज ही मैंने ये फिल्म देखी थोड़ी सी, डॉन। बहुत प्यारी फिल्म थी, इसके तो सीक्वल भी बने, लेकिन वो बात कहाँ। अमिताभ बच्चन के दो बिल्कुल अलग अलग अंदाज थे इस फिल्म में, एक तरफ खतरनाक डॉन तो दूसरी तरफ भोला भाला।

0: Welcome to the second hour of the show. It's nearly 14 minutes after 5 o'clock. Very good evening to you. और अगर आपने अभी अभी सुनना शुरू किया है तो 4 बजे कहाँ थे भाई? 4 बजे से लेकर 7 बजे तक हमारे मिलने का समय होता है और मैं चाहती हूँ कि आप 4 बजे से लेकर 7 बजे तक अपने कान मुझे उधार दे दें. That's it. और कोई ज़्यादा कुछ तो मांगती नहीं हूँ आपसे. और जो भी काम करना चाहते हैं वो करते रहिए. सिर्फ और सिर्फ मुझे तो आपके कान चाहिए होते हैं और इन कानों में मधुर रस खोलती रहूँ, अच्छे अच्छे गीत आपको सुनवाती रहूँ, अच्छी बातें करती रहूँ. बस मैं तो यही चाहती हूँ. अब दो गीत आपने बैक टू बैक इस आवर में सुन लिए और दोनों गीत क्यों मैंने शामिल किए इसकी भी एक वजह है. पहला गीत था फिल्म दाग से, दाग द फायर. 1999 में आई थी ये फिल्म एंड इस फिल्म में कौन थे? चंद्रचूर सिंह और साथ में संजय दत्त भी थे, महिमा चौधरी थी इस फिल्म में. और फिल्म बहुत खूबसूरत थी और इस फिल्म के सारे गाने भी बड़े ज़बरदस्त थे. एंड इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन इस फिल्म का संगीत था राजेश रोशन जी का. चंद्रचूर सिंह अ प्रोमिनेंट फिगर इन हिंदी सिनेमा ड्यूरिंग द 90s एंड केम विद lots of promises with his role in Tere Mere Sapne and Gulzar Saab Ki Machis mein bhi. Aur initially inhe bahut praise mili thi for his good looks and intense grounding acting. Aur Chandrachur Singh lost his way and was rarely seen in the last 2 decades. So kya hua pata nahi, lekin achhe actor the. Jin bhi filmon mein kaam kiya inhone achhi thi filmein. Inka janm hua tha aaj hi ke din 11th October in 1968 in अलीगढ़ उत्तर प्रदेश. एंड इनकी जर्नी शुरू हुई थी वेल हिज फादर कैप्टन बलदेव सिंह वाज एन आर्मी ऑफिसर एंड एन एक्स एमएलए फॉर खायर अलीगढ़ में एक जगह है. एंड वाइल हिज मदर कृष्णा कुमारी देवी हेल्स फ्रॉम रॉयल लीनेज ऑफ इन उड़ीसा. सो इनका शौक था बचपन से कि मैं फिल्मों में आऊँ. ही इज़ अ ट्रेन्ड इंडियन क्लासिकल सिंगर एंड बिफोर स्टेपिंग इन टू द लाइमलाइट ही इम्पार्टेड नॉलेज एज ए म्यूजिक टीचर एट वसंत वैली स्कूल and taught history at his alma mater Doon School. So 1996 mein inka debut hua tha Tere Mere Sapne film se, produced by Amitabh Bachchan Corporation. Aapko yaad hai inka ek production house tha, unhone is film ko banaya tha and usme Chandrachur sabse pehle nazar aaye the. However, it was his role in Gulzar's Machis, a film that that was liked by many Punjab ki Punjab के बारे में स्टोरी थी और won him the फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मेल डेब्यू एक्टर के तौर पर और इनके काम को काफ़ी पसंद किया गया. एंड देन इनकी फिल्मोग्राफी में आती है ये फिल्म दाग द फायर विद महिमा चौधरी, क्या कहना विद प्रीति जिंता, देन जोश में थे ये ऐश्वर्या राय के साथ. एंड और भी कुछ एक फिल्मों में इन्होंने काम किया लाइक बेताबी 97, घनश्याम इन 1998, दिल क्या करे में 1999 में दिखाई दिए थे एंड दाग द फायर भी 99 में आई थी. सिलसिला है प्यार का वो भी 1999 की फिल्म थी एंड आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया फिर 2000 का दौर शुरू हो गया. लेकिन बहुत सारी फिल्मों में नहीं आए हैं. आज अपना बर्थडे मना रहे हैं तो हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं चंद्रचूर सिंह जी को. और अल्ताफ राजा, वेल कुछ लोगों का कहना है कि उनका जन्मदिन आज है 11th अक्टूबर और विकिपीडिया पे देखें तो 15th अक्टूबर को है. तो बाली जी तो उनका ख़ास प्रोग्राम ज़रूर आप तक पहुंचाएंगे. चलिए मैंने एक गीत लगाया और उम्मीद करती हूं कि आपको पसंद भी आया. इनसे भी मुलाकात हुई, इनको इंटरव्यू भी करने का मौका मिला एंड शोज़ भी इनका एक शो था उसमें भी हम गए थे. एंड आई स्टिल रिमेंबर तोशी जी, आप भी थी वहाँ पर और आपके हस्बैंड भी. बहुत अच्छा लगा था आप सबसे मिलकर. सो चंद्रचूर जी को मुबारक आज उनके जन्मदिवस पर. अल्ताफ राजा अगर आज अपना बर्थडे मना रहे हैं तो इन्हें बहुत बहुत मुबारक. अगर 15th को है तो तब भी हमने एडवांस में इन्हें हैप्पी बर्थडे कह दिया.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: अगर इनके द्वारा पैसे ट्रांसफर कराना चाहते हैं इंडिया में कहीं भी तो काम बड़ा आसान है. You can go into the branch online or SBI Yono mobile app के जरिए पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं. Terms and conditions apply. एक ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड के बदले आज आपको ये दे रहे 127 रुपीस एंड 45 पैसास.
1: UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favourite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.com. Go to Sarita Subble.

0: listen to Laika Radio 90s. 90s. On Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Radio 90s.
1: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
2: आज नवरात्रि का पहला दिन है. इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है. मान्यता है कि माँ को गाय के घी का भोग अर्पित करने से आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है और जीवन के संकट दूर होते हैं. प्रार्थना की अब घड़ी आ गई. माँ शैलपुत्री आपके द्वार आ गई. होगी अब मन की हर मुराद पूरी. भरने सबकी झोली माता रानी आ गई. लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं. जय माता दी.
3: Navratri special on Laika, brought to you by Tilda. Tilda Basmati, bringing a taste of home to every celebration. Loved by generations since 1970.
4: Feel good track, brought to you by Dairy Valley.
5: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: भाई मेरे अंगने में तो आपका काम है, अगर आप नहीं सुनेंगे तो मैं ऐसे ही बोलती रहूँगी स्टूडियो में और आप पता नहीं सुन के भी सुना करेंगे या फिर मुझे अपने होने का एहसास दिलाएंगे। वैसे आपके मैसेजेस मुझे बराबर मिल रहे हैं। मीरा जी थैंक यू सो मच, कह रही है मज़ा आ रहा है। और मेरे साथियों ने कहा कि क्यों नहीं आप अमित जी की ही फिल्मों के कुछ और गीत सुनाते, तो इसीलिए मैंने लवारिस का गीत शामिल कर दिया। और उनकी आवाज़ और बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत से गीत गाए हैं उन्होंने, उन्हीं में से मैंने चुना है इस गीत को भी। एंड रोनित रॉय इज आल्सो सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे, तो आई विल ट्राई इस आवर में और इन नेक्स्ट आवर इंतजाब आपकी फरमाइश को भी मैं पूरा करूंगी। एंड स्वीटी कालरा जी, रजिंदर सिंह कालरा जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। रजिंदर जी आपने लिखा है कि सरिता कैन यू प्ले दोस्ताना का गाना, ये किस्सा क्या हो गया जिसमें दोनों का ब्रेकअप होता है। पर दोस्ताना का एक गीत मैं ऑलरेडी लास्ट आवर में प्ले कर चुकी हूँ, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, तो आई एम सॉरी आज पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बाकी के सभी गीत आपको पसंद आ रहे हैं। एंड बहुत से मेरे साथी कल शोले जो देख कर आए रॉयल अल्बर्ट हॉल में, उसका भी जिक्र कर रहे हैं और कहा कि बहुत अच्छा लगा, तो थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग अस नो और आपने इंजॉय किया। राज जी आपका भी मैसेज मुझे मिल गया है। विनी विनोद एंड वरुण जी थैंक यू। भारती, परविंदर, मठारू जी, विमल रायन, जैस्मिन, हाना, संतोष फ्रॉम हैरो, सहर जी, अरुणा जी, मृदु जी, जगदीश जी फ्रॉम बुशी, संध्या भावसर जी, महेंद्र बरजारिया एस फ्रॉम हैरो एंड विजय गुजरे सटन में सुन रहे हैं, वत्सला जी, अमिता जी, भरत गंगाराम जी, महेंद्र पटेल इन क्रॉयडन, अनिल जी, आप सभी का तहदिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। हर्षदा लिम्बानी थैंक यू। एंड दिव्या इन हैरो, सलमा इन मेडस्टोन, फरीदा गुलाम अली जी एंड उल्लास इन टोरंटो, हरप्रीत जी थैंक यू, आप वैंकूवर में सुन रहे हैं, हसमती हसू जी और जगतार जी आप नहीं आए आज वैंकूवर से, कहाँ हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक हैं, खुश हैं और खैरियत से हैं। और जिनके नाम मैं लेना भूल गई हूँ उनसे माफ़ी चाहती हूँ। अर्जुन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मिसेस शेख थैंक यू। एंड तोशी जी आप भी सुन रही हैं, आप कहाँ बैठे सुन रहे हैं अपने होने का एहसास दिलाइए। यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ लाइन।
0: Like a radio. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
2: Another beautiful hit gana. Come on, shuru ho jaye iske saath.

0: tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
1: क्या बात है, कितना खूबसूरत गीत था. और आप भी तो इन गीतों के दीवाने हैं ना. बार बार मैसेजेस मुझे लिखकर भेज रहे हैं, सही था मज़ा आ गया. तो उसके लिए मुझे भी बहुत मज़ा आता है जब आप अपने होने का एहसास दिलाते हैं और मुझे बता देते हैं कि आपको मेरे चुने हुए गीत पसंद आ रहे हैं. तो अब जरा ये काम भी कर लें.
2: Sarita Sabharwal with the biggest classics on Leica Radio.
1: बता दूं मैं जल्दी से आपको, बताना चाहती हूं कि लखविंदर वडाली आ रहे हैं इन कॉन्सर्ट एंड फ्राइडे 16th अक्टूबर को एट क्रिस्टल ग्रैंड स्लाव एंड संडे 18th अक्टूबर को आईसीसी बर्मिंगम में. और लेजेंडरी सिंगर कविता कृष्णमूर्ति जी आ रही हैं परफॉर्म लाइव एट द रॉयल अल्बर्ट हॉल ऑन संडे 1st of November, ब्रॉट टू यू बाय सनातन इवेंट्स एज ए दिवाली स्पेशल. टिकट्स फ्रॉम द वेन्यू आप ले सकते हैं उनके बॉक्स ऑफिस से या फिर आप सनातन लाइव जो हैं उनसे भी ले सकते हैं. सनातन जो स्पॉन्सर हैं या ऑर्गेनाइजर्स हैं एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर हैं कौन, Leica Radio Network.
2: Leica Radio. Sarita Sabharwal with the biggest classics on Leica Radio. Leica Extra podcast update.
1: चलिए बता दें आपको जल्दी कि इस बारी लाइका एक्स्ट्रा के पॉडकास्ट में क्या है. दिस इज एपिसोड 37 लाइका मेन एंड अनफिल्टर्ड है ये. होस्टेड बाय सैंडी शाह फीचरिंग राजबदन दीप राजा एंड विश पटनागर एंड इट्स ऑल अबाउट मेल प्रेजेंटर्स कि उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं. आर विमेन बेटर रेडियो प्रेजेंटर शुड इन्फ्लुएंसर्स रियली गेट अ शॉट बिहाइंड द माइक एंड बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे कि क्या इनमें ईगो प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या क्या होता है. जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा हमारा पॉडकास्ट. एंड Leica Extra पॉडकास्ट इज अवेलेबल ऑन Spotify, YouTube, Amazon, Apple एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स.
2: Leica Extra is here. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
3: ये है लाइका रेडियो.

0: साथ है
1: तो फिर शुरू हो जा सोनियो।
2: चलिए भी शुरू हो जाएं, आप भी शुरू हो जाएं। इस गीत के साथ साथ आपने खूब डांस किया होगा और प्यार में तकरार होता ही रहता है। बहुत खूबसूरत गीत था जिसे मैंने फिल्म कसौटी से चुना था, 1974 की फिल्म।
3: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
2: एक पाउंड के बदले इंडियन रुपीस मिलेंगे आज 128 रुपीस एंड 14 पैसास एंड पाकिस्तानी रुपीस 366.56, बांग्लादेशी टका 162.86, श्रीलंकन रुपीस 437.92 एंड केनियन शिलिंग 171.74, अफगानिस 85.91.
3: Like Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Sarita Sabharwal on LIKA Radio. LIKA Radio. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is... Leica Radio
2: is £101.94 per gram.
3: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
4: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Leica Gold in London, the Midlands and Manchester.
3: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.

हसीना, तुम डाकू मैं हूँ शीशा, तुम पत्थर शीशा पत्थर टकराने दो। आने वाला आएगा जाने वाला जाएगा, तुम ना मानो

0: लास्ट आवर है प्रोग्राम का और पहले दो गीत बैक टू बैक आपने सुने एंड दोनों गीत बहुत प्यारे थे और आपने भी लिखा है कि सरिता दोनों ही बैक टू बैक गाने बहुत अच्छे लगे. थैंक यू. पहला गीत था फ्रॉम द फिल्म जान तेरे नाम. 1992 में आई थी ये फिल्म जान तेरे नाम, जिसे दीपक बलराज विज ने डायरेक्ट किया था एंड रोनित रॉय केम एज ए हीरो इन दिस फिल्म. हु इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे टुडे, तो रोनित रॉय को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो. ही इज़ एन इंडियन एक्टर, ही इज़ वर्कड ऑन टेलीविजन, बहुत टेलीविजन पर भी, क्योंकि सास भी बहू थी उसमें भी पहले आया करते थे रोनित रॉय ही. मिहिर बन के आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं इफ़ यू विश. एंड उसके बाद ये वेब सीरीज में आ रहे हैं. यस, ऋषभ बजाज बन के आए थे, सॉरी ऋषभ बजाज थे ये कसौटी में, कसौटी जिंदगी की उसमें भी थे और इनके काम को काफ़ी सराहा जाता है. एंड ही इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट पेड एक्टर इन टेलीविजन एंड टेलीविजन इंडस्ट्री में. रोनित रॉय और फरहीन थी इस फिल्म की हीरोइन. नदीम श्रवण का था संगीत. इस फिल्म का एक और गाना बड़ा मशहूर हुआ था, इफ़ यू डू रिमेम्बर, कौन सा गाना था वो, हम लाख छुपाएं प्यार मगर, समथिंग लाइक दैट. कुमार सानू और आशा भोसले ने गाया था उस गीत को, तो वो गाना भी काफ़ी पॉपुलर हुआ था. इसी में एक और गीत था, कल कॉलेज बंद हो जाएगा, वो वाला गीत भी अच्छा चला था. तो रोनित जी को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो. और दूसरा गीत मैंने फिल्म कालिया से चुना था, अगेन अमिताभ बच्चन जी की फिल्म का गीत था. इनके साथ थी परवीन बॉबी एंड साथ में आशा फारी, कादर खान ने इस फिल्म में काम किया था, अमजद खान भी थे इस फिल्म में एंड प्राण जी भी, एंड टीनू आनंद ने इस फिल्म को बनाया था. इस फिल्म का संगीत भी बहुत अच्छा था और संगीतकार थे राहुल देव बर्मन, मजरू सुल्तानपुरी साहब ने लिखे थे सारे गाने. और बता दूँ कि वो गाना था ना, जहाँ तेरी नज़र है, जहाँ ये तेरी नज़र है, फिर ये गाना यूज़ हुआ था पलट तेरा हीरो इधर है, मैं तेरे हीरो फिल्म में भी वो गीत आया था. सो उसका क्रेडिट जो है कहते हैं कि कंपोज किया था वो अमिताभ बच्चन जी ने, पर आज के प्रोग्राम में मैंने वो गीत शामिल नहीं किया है, बल्कि ये गीत मुझे उम्मीद है कि आपने पसंद किया होगा किशोरदा एंड आशा भोसले जी की आवाज़ों में.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Right, B. अगर आप इनके जरिए पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो काम बड़ा आसान है. You can walk into the branch, you can go online and do it. And अगर Yono SBI का आपने ऐप डाउनलोड किया हुआ है तो घर बैठे ही पैसे ट्रांसफर कीजिएगा. और आज आपको ये एक ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड के बदले दे रहे हैं 127 rupees and 50 paisas.
1: India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive.
0: Right, bhi, ab maine do geet chune hai film Baghi se. एंड दोनों गीतों में से एक गीत मैंने आप तक पहुंचाना है, क्योंकि वो आर्टिस्ट ऑफ द वीक के लिए मैंने आनंद मिलन का संगीत है. तो फिल्म बागी के दो गाने चुने हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कौन सा गाना छोड़ दूं और कौन सा गाना आप तक पहुंचाऊं. तो अगर आप मेरी हेल्प करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा. तो जल्दी से अपने अपने वोट्स दे दीजिए. ए है हर कसम से बड़ी है कसम प्यार की, वो वाला गीत सुनना चाहेंगे अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाज़ों में, हर कसम से बड़ी है कसम प्यार की. और दूसरा गीत है कैसा लगता है अच्छा लगता है, अमित कुमार एंड अनुराधा पौडवाल की आवाज़ें. सो दोनों में से कौन सा गीत आपको ज़्यादा पसंद है, यू गॉट अबाउट 3 मिनट्स, जल्दी से डिसाइड करके मुझे बता दीजिएगा. ए हर कसम से बड़ी है कसम प्यार की और बी कैसा लगता है, जल्दी से बताइए.
1: This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Sarita Summerwall with the biggest biggest classics on Leica Radio.
2: Make your celebration special with Falcon Festive Offers.
3: Annapurna Chakki Atta, 10 kilos, plus Foco Coconut Water, 1 litre, just $7.99. Master Chow Hakka Noodles, 140 grams, 5 for £1. Hira Mango Pulp, 850 grams, 2 for $2.79. Suhana Pickles, buy one, get one free. 1 kilo at $2.99 or 400 grams at $1.49. Dawat Extra Long Basmati Rice, 10 kilos, $15.99.
2: Aur shopping ke saath paye Star Tours ke holiday packages aur Malabar Gold and Diamonds ki taraf se gold coins jeetne ka mauka. Falcon Cash and Carry. Visit 82A Syston Street, Leicester. LE12JU 2A Rowlett Hill, Leicester LE54UN or Falcon Supermarket 135 Carlton Road, Nottingham NG32FN. Happy Diwali!
4: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras, we've got it all. Call Citybond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
5: Celebrate Diwali with Chalo Let's Go and Chai Chopal Diwali Gala 2026.
6: Saturday 31st October at the Conference Suite West Bromwich. Enjoy a vegetarian feast, live entertainment and family fun.
5: Adults £30, children aged 5 to 12 just £15 and under 5s go free.
6: Book now at diwaligala2026.eventbrite.co.uk. For sponsorship call Rakesh on 07436 594 323.
5: Sponsored by
6: GARG Solicitors, award-winning nationwide jewellers Diamond Heaven, ICNW Limited and SBI UK.
5: Radio partner Leica Radio.
7: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020 8839 0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
8: Something new has just landed at Cake Box. Nationwide delivery is here. Now you can send a personalized cake box straight to someone special, wherever they are. Birthday miles away? Send a cake. Big congratulations? Send a cake. Just want to make their day? Send a cake. And because it's new, delivery is free for a limited time only. Wherever they are, be part of their celebration. Cake Box Celebrations, now delivered nationwide. Order now at cakebox.com.
9: For 15 years, Jannan has been part of your story. Across generations, across cultures, across every style. For everyday moments, special occasions, celebrations and new beginnings. Because style has no age, no background and no boundaries. 15 years of Jannan. For you, for us and for everyone. The Jannan and J. Anniversary Sale, up to 70% off, is now on. Visit our stores nationwide, including Birmingham and Leicester. Or shop the sale online at jannan.com and junaidjamshed.co.uk.

0: गिरता है।
1: भैया आपका भी साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आप मेरे साथ ही रहिएगा। और ये फिल्म थी बागी, जिसका संगीत दिया था आनंद मिलन ने, इस फिल्म में काम किया था सलमान खान ने, और इनकी हीरोइन थी नगमा। गीत बहुत खूबसूरत था, अमित कुमार एंड अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में आप तक पहुंचा।
2: LYCA This is Leica. Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
3: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आनंद बख्शी साहब का लिखा गीत, फिल्म रोटी से हमने चुना था इस गीत को। और गीत बहुत खूबसूरत था, जिससे गाया किसने था, लता जी ने एंड किशोर दा ने। और इसे आज के प्रोग्राम में शामिल करने की वजह ये थी कि ये फिल्म आज ही के दिन इन 1974 में रिलीज हुई थी, जिसे मनमोहन देसाई जी ने डायरेक्ट किया था, कादर खान ने इस फिल्म के डायलॉग्स लिखे थे, आनंद बख्शी साहब ने लिरिक्स लिखे थे। एंड फिल्म बहुत खूबसूरत थी, इसका थीम बहुत अच्छा था, स्टोरी बहुत खूबसूरत थी। राजेश खन्ना उस टाइम पीक पर थे और राजेश खन्ना के साथ हीरोइन थी मुमताज़, दोनों की जोड़ी को बहुत पसंद किया जाता था। आपने ये फिल्म देखी हुई है? अगर देखी हुई है तो मुझे ज़रा जल्दी से बताइए आपको ये फिल्म कैसी लगी थी। वो दौर इन दोनों का ही था, राजेश खन्ना एंड शर्मिला टैगोर की जोड़ी या राजेश खन्ना एंड मुमताज़ की जोड़ी को बहुत बहुत पसंद किया जाता था। तो आप भी बता दें कि आपने ये फिल्म कौन से ईयर में देखी थी, किसके साथ देखी थी, कहाँ पर देखी थी, जल्दी से व्हाट्सएप करके बताइए। और बता दूं कि ये गीत आप तक किसने पहुंचाया?
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोको नूडल्स, क्विक टेस्टी हेल्दी फ्लेवर्स, परफेक्ट फॉर माय बिजी डे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर।
0: भाई, जो मेरे साथ ही बराबर मैसेजेस लिख रहे हैं उनमें मैं विमल जी आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, परविंदर मठारू जी थैंक यू, रजिंदर सिंह कालरा जी आपने भी मैसेज लिखा है, प्रज्ञा जोशी थैंक यू, इंतशाब आपका भी, एंड वर्मा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इंतशाब आप भी सुन रही हैं, और जान तेरे नाम का गीत हमने आपके नाम किया क्योंकि आपकी पसंद थी वो। अर्जुन जी आपका भी, अरुणा जी थैंक यू, एंड सोनी रावल जी साइलेंटली लिसन करती हैं प्रोग्राम को और इंजॉय करती हैं, ये जानकर बहुत अच्छा लगा। एंड हमारे बहुत से साथियों ने कल एकता में मुझे मेरे साथ उनकी मुलाकात हुई, तो बहुत सच मानिए मुझे भी बहुत अच्छा लगा था आप सबसे मिलकर। सबके नाम मैं याद नहीं रख सकती क्योंकि सरिता भुलक्कड़ है और हमेशा कहती हूँ कि मैं भुलक्कड़ हूँ। तो आप सभी मुस्कुरा दीजिए, मुझे पता चल जाएगा कि आपने भी मेरा काम पसंद किया कल भी, और आज का रेडियो प्रोग्राम भी आप इंजॉय कर रहे हैं।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, 1 pound ke badle aaj aapko mil sakta hai 128 rupees and 9 paisas. Ye LemFi walon ka rate hai, and Afghani is 85.84, Pakistani rupees 366.37, Bangladeshi taka 162.75 and Sri Lankan rupee 437.77, Kenyan shillings 171.67 and US dollars 1.32.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Sarita Summerwall with the biggest classics on Leica Radio. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: राइट, गोल्ड का रेट इस वक्त है मार्केट में 101 pounds and 94 pence का एक ग्राम सोना।
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
3: Hello. Wake up with me, Kajal, on The Breakfast Show, where I take you down memory lane, get inspired by Morning Mantra, Monday to Friday, 6 a.m. to 10 a.m, Leica Gold and Leica Radio Midlands.
0: Leica Radio. और इस वक्त आप साथ दे रहे हैं अपनी प्रेजेंटर सरिता का। घड़ी की सुइयां ये बता रही हैं कि सरिता जाने का वक्त है, और जाते जाते एक और बात बता दूं आपको कि अगला और लास्ट गाना आप सुन पाएंगे कमर्शियल ब्रेक के उस पार, लेकिन वो गीत इसलिए चुना है क्योंकि ये फिल्म भी आज ही के दिन इन 1963 में रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम है दिल ही तो है। राज कपूर और नूतन ने इस फिल्म में काम किया था, एंड रोशन जी का था संगीत, साहिर लुधियानवी साहब के लिखे लिखे हुए बोल आप जरूर एंजॉय करेंगे ऐसी मुझे उम्मीद है और मुझे अब माइक्रोफोन के इस तरफ से इजाजत दीजिए मेरे बाद आ रहे हैं सैंडी शाह विद द विंटेज गोल्ड प्रोग्राम लेकर और फिर हमारी गोल्ड नाइट्स एंड देन फिर कल सिलसिला शुरू होगा ब्रेकफास्ट शो से काजल आपका साथ देंगी काजल के बाद रवि शर्मा जी के बाद आएंगे बाली ब्रह्म भट्ट एंड देन बाली ब्रह्म भट्ट के बाद सैंडी शाह अगेन एंड देन अनीसा नासिर अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा मुझे इजाजत और मैनचेस्टर में अब आप सुनेंगे प्रोग्राम जैसी के साथ और दूसरी तरफ आ रहे हैं नीरज उनका साथ दीजिए बाय बाय टेक केयर
4: इट्स बैक इट्स बिगर एंड बेटर
1: जी टीवी एंड लाइका रेडियो प्रेजेंट्स द लेस्टर दिवाली शॉपिंग फेस्टिवल
4: Powered by Ram Jewelers and associated with UK Management College.
1: Join us on Sunday the 1st of November from 12 p.m. up until 8 p.m. at the Ram Garia Centre in Leicester. With shopping, food, entertainment and plenty more. It's a Diwali celebration you won't want to miss.
4: See you there. Supported by Disha Premium, travel partner, home and away holidays, exclusive charity partner, Go Dharmic.
1: For store bookings, call 07803-240-580.
4: Or visit diwalishoppingfestival.co.uk. No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
1: Herald. New world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide. No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
1: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट रागासन.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग. रागासन.

0: आई डोंट थिंक सो लाइफ में कुछ भी एवी एवी हो जाता है. ऑफ कोर्स आज धुरंधर एक्टर रणवीर सिंह फील इज एवी एवी 6 फुट से 1.5 फुट हो गया. ऐसे पॉसिबल आई डोंट थिंक सो. वेल यू आर लिसनिंग टू लाइक अ रेडियो, लेट्स टॉक मोर.
1: लाइक अ रेडियो लंदन.
0: सो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. स्पीकिंग ऑफ एवी एवी फ्रॉम द फिल्म बैंड बाजा बारात, वन ऑफ द पेपियस्ट सॉन्ग ऑफ 2010 era. Love this track and of course the vibe of Navratri should be there. So I hope you're enjoying the playlist here. Well, speaking of Ranveer Singh, I think now he understood when you take a panga with the wrong woman, you do become dead inch from 6 inch. So make sure men out there, panga soch ke lena. Well, you are listening to Like a Radio. I'm here with you till 10, covering it for Neeraj. Naam hai mera Priyanka.
1: Feeling smooth with Neeraj.